अकाल प्रतिष्ठा की कर दे तो सोना नाथ अनाथ न मोसक तो सोना दानी न मोसक तेरे वर्गा नाथ नहीं ते मेरे वर्गा कोई अनाथ नहीं तेरे वर्गा कोई दानी नहीं ते मेरे वर्गा कोई भिखारी नहीं। एक एक पंक्ति बड़े प्यार नाल सारे मिलके आके शोर किया।

ਵੇਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਤੁਨੇ ਨੇ ਫਿਰੇ ਜਿਉਂ ਬਤਾ ਲਿਆ, ਚਾਰ ਪੁਕਾਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਨੇ, ਖੱਟ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਤ ਵਖਾਨੇ। ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਬਹੁ ਸ਼ਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤਿ, ਵੇਖੇ ਸਰਬ ਕੰਢੋਲ, ਕੁਝ ਸੁਨਾਈ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ, ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਲਯੁਗ ਜੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੇਵਲ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 69 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ ਉਮਰਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। 1970 ਦੀ ਪਰ 9 ਖੰਡਾਂ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਧਰਵ ਦੇਵ ਗੰਧਰਵ, ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ, ਕਰਮ ਲੋਕ, ਅਜਾਨ ਲੋਕ, ਇੰਦਰ ਲੋਕ, ਵਿਸ਼ਨ ਲੋਕ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ, ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰ ਵਸਤੂ। ਜੈਸੇ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਦਾ ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੋ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੇ ਸਮਝੀ ਕੋਈ ਜੇ ਸਮਿਤ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤ ਵਾਰੋ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਸੰਸਾਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਅਕਸਾ ਤੀਰਸ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਜੁਗ ਚਾਰ ਚਰੇ ਕਲ ਆਸਰੀ ਹੋ, ਜੈਸੇ ਕੋਟ ਬਸਤਾ ਉਰਦ ਮੁਖੀ ਬਸੰਤਰ ਮੈਂ ਤਨ ਦਾਹੀਦੀ ਹੋ, ਜੈਸੇ ਲੱਖ ਮੇਰ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਮੈਂ ਸਮੇਰ ਜਗ ਭੰਗ ਠਿਓ, ਪੁਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਬਸੇ ਕੀਤੀ ਜਨਿਕ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰ ਦੇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਉਹ ਅਪੋਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਅਪੋਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰਚਿਤ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਰ ਸ਼ਿਵ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੰਕੇ ਉੱਤਰ ਲੋਕ ਤਮਾ ਪਕਸ਼ਪਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਕਸ਼ਪਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਕ ਹੈ। ਜੋ ਰਿਗਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ, ਅਥਰਵਣ ਦੇ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਅਪੋਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ। ਚੌਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਕਥਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਉਪਵੇਦ ਬਣਾਏ, ਗਾਂਧਰ ਤਨਰ ਅਰਥ ਉਪਵੇਦ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੇਹ ਹੈ, ਗੇਹ ਹੈ, ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਭਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੇਹ ਹੈ, ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਰੂਪ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਜਾਣ, ਜਗਤ ਸਮੂਲ ਅਨਰਥਪੁਨ ਵਤਾਂਕੀ ਹਥਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਗੀਤਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੇਸ ਵਿਚੋਨੀ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਖਿਆਨ ਜੋ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਰਜਨ ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਾਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਮੇਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਾਂਗਾ। ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਗੀਤਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 8 ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਦ ਵਿਆਜ ਨੇ 18,000 ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ, ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ,
सब जीवन को परमात्मा के पास ले जा रहे हैं, परमेश्वर के पास ले जा रहे हैं। रामायण के बीच में एक करोड़ श्लोक है, वाल्मीकि ने बनाया। सज्जो के बीच में त्रेता हाली शुरू विनाशी हुआ, रामचंद्र अवतार से पहले ही बनाती। उसके बीच में जितने श्लोक हैं जीवन परमेश्वर के पास का उपदेश कर रहे हैं। पंजवें पिता ने श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी बनाई। दरबार साहब के बीच में अठा गुरुआ तरतालिया भक्तों की बाणी है। कोई शब्द, कोई पंक्ति, कोई तुक दसो जी परमेश्वर के बिना और कोई उपदेश करती है। वेद पुराण कारण पोथियां नाम बिना सब गुरु करना हो। कबीर लूटना है तो लूट ला, राम नाम है लूट, फिर पाशो पछताएंगे राम जाएंगे शो। हरसो हीरा छाड के करे आन की आस, तेन दोषक जाएगो सत पाखे रविदास। कोई पंक्ति ले लो, कोई तुक तुक ले लो, कोई बाणी ले लो, अखा जीना बिसरी में जा। जे जो चाने आर जा और सुनी होए, नवा खंडा वे जाने नाल चले सब कोए, चंगा ना तो खाए के जस कीर्त जा ले, पर जे तिस नजर न आवे तो भत न पूछे के। सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगन पूरे, ग्रह सोयन चंदन संगल लय मोती हीरे, मन विचे सुख मानदा कुछ नहीं बिसूरे, पर सो प्रभ चित न आवे दृष्टा के कीरे। तोतन त्यागते ही सुन रहे जल प्रेत बखान त्रिया पै जा है, पुत्र पिलित्र सुमित्र सखाए बेगन कारो आए सदा है, पौन पंडाल तरे गर जेतक शागत प्राण बगान कहे है, चेत रे चेत चेत महापशु अंत की बारी अकेले ही गया है। जिसमें इस पिता कौत जेस को मानते हैं तो कहू में ऐश को ऐसे बता है, कोई कहे विष्णु विष्णायक जाए पजे अग्य कटे है, बारह हजार विचार अरे जल अंत समय सब ही त जय है, ताहे को ध्यान पर मान हुए जो था अब है अग आगे है। उस परमात्मा का ध्यान करो जेरा आदि सच जुगाड़ सच है भी सच नान खुशी भी सच, आदि पूरन मध्य पूरन अंत पूरन परमेश्वर है। आद मध्य अंत पर रसोई और न कोई दिखा लिए जियो, वो जरा ऐसा परमात्मा है सचिदानंद शुद्ध। उस अंतर जामी परमात्मा ने सब वेद ग्रंथ कथन कर दे है, और जिन्हें उपतार ऋषि मुनि उन्हें कथन कर दे है कि उस परमात्मा की प्राप्ति करो। वो परमात्मा कैसा है, वो कैसा परमात्मा देखो गुरु नानक देव महाराज का ध्यान। सारिया पे पहला एक आ, सारे श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी से पहला एक आ, जगजी साहब से पहला एक आ। एक का की मतलब है एक परमात्मा। आ सारा सारी दुनिया के आकार नाम दे स्वरूप है, नाम ओंकार का स्वरूप है, ओंकार एक का स्वरूप है, सारा प्रपंच एक का स्वरूप है, एक सारा प्रपंच निकलता, एक रूप है, एक सारा प्रपंच मिलता। जैसे वेखो एक आ दो एक बना लो तो तीन दो होगा, ते तीन एक होगा तीन होगा, चार एक बनाओ चार होगा, भी एक भी सौ एक सौ हो गया, दो हजार एक दो हजार हो गया। देखो जिन्ने एक उन्ने उन्नी गां हिंसे हो जाएंगे, पर वो जिन्ने हिंसे है पचास हिंसे है या सौ हिंसा हैगा वो एक ते बिना है, एक ते बिना कोई हिंसा हैगा, एक ही सारे हिंसा का रूप है। जिन्ने हिंसे एक का रूप है, एक हिंसा का रूप है, जिदा जल तरंग का रूप है, तरंग जल का रूप है, सोना भूषण का रूप है, भूषण सोने का रूप है, मृत का घट का रूप है, घट मृत का रूप है, सारा प्रपंच एक एक का रूप, एक परमात्मा का रूप है, एक एक का रूप है, एक संसार का रूप है। इसके बीच में खुद दशमेश पिता की उपासना गुरु साहब आनंद प्रसाद के बीच में दसते हैं, जैसे एक वागते कनूका कोट आगे उठे, न्यारे अन्याय हुए कि फिर आग में मिलाएंगे, जैसे एक तूर थे अनेक तूर पूर्त है, तूर के कनूका सब तूर ही समाएंगे, जैसे एक नद से तरंग का कोट उपजित है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे, तैसे भी स्वरूप थे अभूत भूत प्रगट हुए, ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। दसवें महाराज सिखा दस दे पाई, उस एक सारा ब्रह्मांड पैदा होंदा, एक रूप है, एक नाले मिलता, एक का नाम किसका है, ब्रह्म का। क्यों गोरख ते सिद्धा ने गुरु नानक देव महाराज ने पूछा, आपका क्या मत है, आपका कौन सा रास्ता है, आप की उपदेश करते हैं। महाराज कहते एक परमेश्वर की पूजा करनी, एक अकाल पुरख नु मनना, जेरा सबदा अधिष्ठान है, जेरा सबदा आसरा है,
मेरा चक्कर चेहनर बन गया दल पात नहीं जे रूप रंग रेपे को कहना सकत गया ऐसा जो परमात्मा है भरनो चेनो बारा नानी का पाश अदिर से सहारा ये अखर खर जाएंगे वो अखर में नहीं ऐसा जो अद्वैत परमात्मा है जिसके बीच में सजाती विजाति सुगत पेर नहीं है जिसके बीच में देश काल वस्तु परिशेर नहीं है जेरा नाम रूप से रहत है जेरा थापियो न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए ऐसा जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति इस जीव न करोने वास्ते साडा अवतार हैगा असि उस परमेश्वर का उपदेश करते हैं होर किसी वस्तु का असि संसार के विच में उपदेश नहीं करते हैं जेरा निरभौ ते निर्वैर है निरभौ ते निर्वैर ये दो विशेषण उस कटते हैं ये परमात्मा का स्वरूप लक्षण है जेरा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर परमात्मा का स्वरूप लक्षण है उसका असली स्वरूप ही समझ लेना उसे वक्रे नहीं आ गया इस करके जाप करने से तू तू करता तू हुआ मुझे मैं रहा न हूं जब आपा पर का मिट गया जब देखा था तो जिन्हें अवतार ऋषि मुनि है दस गुरु है दरबार साहब की वाणी है वेद है ग्रंथ है विशेषादिक ऋषि मुनि है कबीर नाम के भगत है ये सारे परमात्मा के प्रसंग आते हैं परमेश्वर न कथन करते हैं भाई तुम उस परमेश्वर की प्राप्ति करो ये जीव अपनी उत्पत्ति से पहले उस परमेश्वर का रूप था जिस वे कोई चीज न से पैदा हुई न आकाश न पवन न अगन न जल न पृथ्वी कुछ भी ना रूप था माया ने अविद्या ने झूठी हंगता हंगता ने काम ने क्रोध ने लोभ अहंकार ने उस परमेश्वर से इस उस परमेश्वर से इन जुदा करके इस संसार रूपी जंगल विच लिया के ते गृहस्थ रूपी खूह विच सुट दिता हैगा हुण ये दुखी हुंदा कलेशा नूं प्राप्त हुंदा हुण महाराज ते कहिंदे नैन ना देखे सार से नैन बिहा लिया करण न सुन ही नाद करण मुंद कह लिया रसना जप न नाम तिलो तिल कर कटिए हरण जब विश्व गोविंद राय जनन कटिए ये सानू उपदेश देंदे जिन काल मानस जन्म निर्मोल पायो सफल जन्म गुरु चरण शरण कै लोचन अमोल गुरु दरस अमोल देखे सरबन अमोल गुरु बचन धरन कै नासका अमोल तिर नारबिंद वासना कै रसना अमोल गुरु मंत्र सिमरन कै हस्त अमोल गुरु देव सेव सफल कै चरण अमोल प्रदक्षिणा करन कै ताही शरीर प्रवान होवेगा जे परमेश्वर दे पासे लगेगा ताही ये शुद्ध होगा ताही निर्मल होगा परमेश्वर के नाम के बराबर संसार के बीच में कोई वस्तु नहीं हैगी है। एक शाबे के बीच में कृष्ण नाम लिख के पा दिया दूसरे शाबे के बीच में नारद मुनि ने कुल दुनिया का सोना लाल मोती हीरे पा दिए वो नाम का पासा पारी रहा तन तन राजा जनक है जिन सिमरन की ओर एक करी के सिमरन पापी तरह ने इसे करके नामदेव जी कहते हैं पावों फेरी हाथों ताल नामा गावे गुण गोपाल गंग जमन जो उल्टी रहे तो ना मार कहता रहे गंगा जमना उल्टी नहीं बग सकते नामुमकिन है बग जा तो बग जा जी गल हो नहीं सकती हो जाए नामदेव जी मनुखा दे के बीच में ऐसे परमेश्वर नू ऐसे परमात्मा नू नहीं छड़ सकते बसदा बस की नहीं सब राजे बेनती करे पटरानी पूत प्रहलाद किहो नहीं माने तिंतौ रखा नहीं प्रहलाद कहना मैं भी आखी नहीं लगता अपनी माता के आदर नू कहना मैं परमेश्वर नू मनुखा दे के बीच में नहीं छड़ता समन मूसन अपने पिता नू आंदा कब दब जाओ जाइए विशद प्रेम बिहार मूसन तब ही मूसिए विशद पुरख दिया हे पिताजी मैं व्याकल नहीं हुंदा दुनिया दी चीजां जे मैनू परमात्मा भुल जावे मैं उस वेले व्यापक व्याकल हो जाना कहां पयो ये तन पै शनशन प्रेम जाए तो डर पै तेरे जन ए रविदास भगत कहिंदा मैं जे मेरा प्रेम जावे कमती होवे महाराज तां मैं गल रहेगा ऐसा जो परमात्मा हैगा ऐसा जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हैगा उन्हों सारे ऋखी मुनि अवतार सब वेद ग्रंथ जिन्हें भी सज्जे द्वापर तेरे ते कलजुग के बीच में होए हैगे वो सारे उसनु कथन करते हैं कि उसकी प्राप्ति करो तुसी अपनी उत्पत्ति से पहला उसका रूप थे ये हंगता ममता झूठी माया ने फन जुदा करके ये जीव बनाता ते हुण तुसी फिर उदे नाल मिलो देखो शब्द भी आउंदा माया ना होती बाप ना होता कर्म ना होती काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कवन कहां ते आया राम कोई न किसी केरा जैसे तरबर पंख बसेरा चंद न होता सूर्य न होता पानी पवन मलाया शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहां ते आया खेचर पूछे तुलसी माला गुरु प्रसादी पाया नाम परम तत्व सतगुरु हो लिखाया इसका मतलब की है तू पहले ब्रह्म था
गुरु नानक साहब भी कहते ना तो स्वर्ग मस्ते आला दो सुख पिस नहीं कह काला जन्म मरण नहीं नरक सुख ना को आए न जाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश न कोई अवर नदी से को सुख उल्ट पवन मन मीनसी चपल गत दसवें द्वार पर आगमन वास है ताहे ना पाव के पवन जल पृथ्वी आकाश नाये सर सूर उत्पत न विनाश है ना ही प्रकृत वृत पिंड स्थान ज्ञान शब्द सुरत ना ही दृष्ट न प्रगास है स्वामी न सेवक उन्मान अनद परे निरलम निर्मन विषम विश्वास है। देखो ये भाई गुरदास जी ने लिख दिता इस करके इन्हों का तात्पर्य है कि जीव अपनी उत्पत्ति से पहले परमेश्वर का स्वरूप था इन माया ने विद्या ने पुत्रा ने स्त्री ने धन ने दौलत ने झूठे मोह ने ये शरीर के इतिहास ने फिक्रा ने चिंता ने इन्हू जुदा कर दिता उस परमेश्वर से हूं यह जीव उस परमेश्वर नाल किदा मिल सकता है। हम सानू सोच तो यह करनी चाहिए है फिक्र तो यह करना चाहिए कि जुदा तो असि हो गए हैं हूं असी परमेश्वर नाल किदा मिलिए कोई जन हर स्यों देवे जो मेरी लागी प्रीत सुजान स्यों मैनू बरजे लोग है जा कोई हैरे संत जो तोरो देखूंगा कोई संसार के बीच में संत महात्मा लिखी मुनि होवे जेरा मैनू मेरे पिता से मैं जुदा होया मैनू अपने पिता नाल मिला देवे हूं यह ढंग तरीका असं की करिए संसार के बीच में आगे भी किदा उस परमेश्वर नाल मिलिए कोई किसी संतान महात्मा पर शंका करदा हवा ना तथ मैं दुखी दरियो देख संसार बुढ़त हो पव सिंध में मोहे करो प्रभ पाल महाराज मैनू इस संसार विचो पार करो मेरा जन्म मरण कटो वो संत महात्मा भाई की उपदेश करते हैं फिर किदा ही जीव जीवत भाव का नाश करे अग्ञान का अविद्या का नाश करे सेंसे ग्रंथी का हिरदे ग्रंथी का जन्म मरण का कर्म का कामना का देह दयास का मोह का किदा ही नाश करके उस परमेश्वर न मिले हुण इह हरेक दे जुग्यासु दे मन के विच में शंका पैदा हुंदी है इहदी निवृत्ति करन वास्ते गुरु नानक देव महाराज कहिंदे आ इह संसार दी निवृत्ति करन वास्ते और परमेश्वर दी प्राप्ति वास्ते तुसीं धरू मंगल करो जिहदा धरू ना कीती धरू ना कीता कीती है पंजां कालां दा धरू बिघन पाने वाला सारे देवते इंद्र दे सने सब बिघन पाउंदे से ओहदे मां पे भी आके बिघन पाउंदे से धरू अपने निश्चय के विच में अटल रहा कामयाब होया कि नहीं होया। दूसरा दृष्टांत सज्जू के बीच में प्रहलाद भगत था वह भी सत्ता अठा साल का था उदे भी माता पिता दुश्मन हरन कसवर ना के सारे दुश्मन अगाना लाते है समुद्रां च पाते सुटते है तो उपर हजार हजार मन के पर्वत उत्ते डिगते है वो राम राम राम राम राम देखो कामयाब हो गया जिदा कामयाब हो गया जिदा वो परमेश्वर नाल मिले वेखो सन किसन सनातन ब्रह्मा के पुत्र हो अपने पिता नु कहंदे मेरा तू कोई पिता नहीं सानू ज्ञान करता पिता फिर वो ब्रह्मा ने जाके विष्णु भगवान नु आख्या विष्णु नु हंस अवतार धारना पिया उन्होंने जाके ज्ञान करना पिया सन किसन सनातन नु वेखो कामयाब हो गया। वेखो तेरे ते जो के विचों पिलरी ने किनिया तकलीफा पाईया है पिलरी ने बहुत ही तकलीफा सईया है रिखी भी मुखालफत माता भी पिता भी पति भी सब मुखालफत उस वेले से सब दुख तकलीफ देंगे थे वो राम राम जपती सी ते श्री रामचंद्र ने उन्हें नौदा प्रकार की भगती सुना के ते ज्ञान दे के विकू के समय झूठे वेल खाते है ते चरण तूर मत्थे में ला के उन्हू हाथ मिलान कर देता। देखो हनुमान जी होया हनुमान जी श्री रामचंद्र जी ने एक माला दिती सी वो सी रावण के तोशे खाने में जमा रावण नु ब्रह्मा पासो मिली सी ब्रह्मा नु विष्णु पासो मिली सी ओह फिर विष्णु ने मन भी सोचा कि श्री रामचंद्र नु दे दईए ओ श्री रामचंद्र जी ने माला हनुमान नु देती हनुमान माला ही पर नहीं जाओ विष्णु ने आके पंदे की मैं आखिर जिसके बीच में परमेश्वर का नाम है नहीं वो चीज मेरे किसी काम की नहीं तेरे शरीर च केड़ा नाम है सारे शरीर के बीच में राम राम राम राम राम मनसूर की सुभा विचों भी एन लाख एन लाख गुरु रामदास गुरु अमरदास महाराज कहंदे है हम कीरे किरम सतगुरु सरनाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरुदेव मुख राम नाम प्रगास फिर भी परमेश्वर का नाम मंगते है जिदा ओ मुक्त हो गया भाई मुक्त मिच्छ सी चेतात विशियन विश्व त्याया शुमार जब दया तो सतू की बदसा जे तेन मुक्ति की इच्छा जिदा उन्होंने की है इदा तू संसार के बीच में अपने घर देखो उन्होंने कितना परमात्मा के बीच में प्रेम था अर्जुन का कृष्ण भगवान के बीच में कितना प्रेम था जिस वे कौरव पांडव का जंग शुरू होया उस वे दुर्योधन मदद लेने वास्ते जाता श्रद्धा नहीं
विश्वास नहीं। नेचर महाराज या बानिया रोज सुनते पर श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं आएगा, इधर ध्यान ही नहीं आएगा, पुत्रा तिया स्त्रियों से नेच आएगा, कितों खावे पीकर महाराज से नेचा नहीं। वो कहने काहे रे मन चित में उदम जा आज क्यों पढ़िया सहल पतन में जंतु पाए ता कर के अगे गरिया मेरे माधव जी सर संत मिले सुतरिया। तो इस करके दुर्योधन की श्रद्धा नहीं, वह जाके नमस्कार नहीं कृष्ण भगवान ने करता तो वो सराने वाला कुर्सी लह के सरें जुत्ती बैठ जाता है। पूरे मगरों फिर की होया युधिष्ठिर ने अर्जुन अर्जुन आखिया अर्जुन परमात्मा का पता नहीं लगता, कदे देवतियां दे पासे हो जाता कदे राक्षसों दे पासे हो जाता, तो तू भी जा। अर्जुन श्रद्धालु सीगा, वो स्नान किया वस्त्र धोते प्रसाद लिया, वो जिस वे अर्जुन गया तो उसने जाके चरणा के बीच में दंडवत प्रणाम किया, प्रदक्षिणा लिया तो चरणा का ध्यान करके बैठ गया। तो कृष्ण भगवान ज्ञानी से त्रैकाल दर्शी से उन्हें वेखे एक पासे दुर्योधन बैठा एक पासे अर्जुन बैठा। पहले अर्जुन की तरह वेख्या, अर्जुन ने कहा तू की चाहना जी, मेरा जंग हो रहा मेरी मदद करो। दुर्योधन कहता जी मैं पहला ना आया, मैं तो इतने पहला ना आया, मेरी सुनो। दुर्योधन क्या बात, मेरी मदद करो। श्री कृष्ण भगवान कहते हे दुर्योधन साडा एक संकेत है, धर्म है, बिरद है, साजी शरण के बीच में कोई आवे असि उसकी मदद कर दे, असी तेरी भी मदद करनी है, असि अर्जुन की भी मदद करनी है, दोहां की मदद किदा करूंगे, दोहां की मदद इदा करांगे, एक पासे मैं अकेला होवेगा और शास्त्र नहीं पकड़ांगा जंग के बीच में, एक पासे मेरी सारी फौज सारे शास्त्र अस्त्र खजाने होंगे, तू पहला आया तू जी मर्जी चीज मंग ला। ओ शरद सऊरी शरदा है ना, इस करके दुर्योधन कहने लगा महाराज जे तुसी जंग भी नहीं करनी ते युद्ध के बीच में शास्त्र भी नहीं पकड़ना तो असी तुहानू उत्थे की करना हैगा, थोड़े कोई असी नाच नहीं चाहने है, रसा पानी है, बाकी सारी फौज दे दियो। कृष्ण भगवान ने कागज लिया ते उपर दस्तखत कर दिते, हे दुर्योधन मेरे बिना सारिया फौजा का तू मालिक। खुशी होकर चला गया। पिछों अर्जुन नू कहन लगे अर्जुन जी तू पहला आ तू ना ले लेना। अर्जुन कहता हे महाराज इस संसार के बीच में मेरे को किसी देवी देवते दी रिद्धियां सिद्धियां दी खजानियां दी शास्त्रां अस्त्रां दी किसी मुक्ति दी किसी वस्तु दी भी इच्छा नहीं है, गई है। ना मैं आप नूं चाहना पे तुसी शास्त्र पकड़ो, ना ये चाहना पे मैनू सलाह दियो, बस मैं एक वस्तु चाहना है जिस वेले मेरी पार्टी इधर खलोवे ते मेरे मुखालफत दुश्मन खलोन तो सारे नूं पता लगे पे कृष्ण भगवान मेरे पक्ष के बीच में खलोता है, बस मैं इन्हें चाहना है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन तेरी श्रद्धा है तेरा विश्वास है या इस मैदान के बीच में तेरी फतेह होगी और मैं तेरा रथ फटकाऊंगा। देखो प्रेम सच कहो सुन ले सभी जन, प्रेम कियो तुम्हें प्रभाव पायो गोविंद पाओ भगत पुगा। बेबे नानकी किदा गुरु नानक देव ने खिंच लेंदी सी, वो सिर्फ एक सवैया हैगा सूरज प्रकाश के विच भाई संतोष ने लिखा हे जगबंध प्रभु सो कंध मुकंध आनंद को दर्शन दानी, श्री करतार दतार मुरार अवतार लियो सोई मैं मन मानी, जे शरदा मम साच हृदय मैं तो प्रगटो पर भात महानी, शोक हरो निलोकन को शोक अतमत मूर्ग मानी। ई प्रेम सा बेबे नानकी मर जाती सी प्रेम के बीच में, प्रेम महाराज फिर खिचे हुए आ जाते से। फिर भाई मांझ का प्रेम देखो, भाई मांझ का किन्ना प्रेम था, पंजे पिता के चरणों के बीच में कन्या भी गहने पाई स्त्री भी गहने पाई, फिर लंगर दी जाके सेवा लगा कर महाराज ने लंगरों रोटी खाना भी हटाता, फिर दसा नह दी बार किरत करके लिया वो रोटी खादा फिर लंगर दी सेवा करता है। फिर महाराज उन बुलाते नहीं है, फिर एक दिन वो लकड़ियां लैन वास्ते जाता सतगुरां दे लंगर वास्ते, ते लकड़ियां लेके आंदा रास्ते के बीच में शाम पै गई है ते उदी अखां मोहरे उदी दस्तार आ गई है ते नेरी पिछा नहीं जांदी है, मोहरे खूह दी मन है नी विच गिर पिया लकड़ियां ते जन्ने लंगा। सारी रात खलो के महाराज दे गीत गाउंदा रहिंदा, गीत गाउंदा रहा महाराज दा भजन करदा रहा। फिर सवेरे पंजे पिता वेखो किदा अपनी संगत विचों नंगी पैरी फिर लेने वास्ते नठे है भी साडा सिख खूह च डिग पिया, फिर जल्दी खूह दे लागे गए तो पंजे पिता ने भाई मांझ नूं आख्या भाई तू कौन आ खूह के बीच में, कहिंदा मैं गुरु करदा कूकरां दा कूकर हैगा दासां दा दास हैगा, भाई जे तू मेरा भला करना चाहना तो लकड़ां सतगुरां दे दरबार के बीच में लै जा,
महाराज कहते तेन लकड़ा का वाग फेंक दो अपने शरीर का कोई नहीं फेंको, कहते अपने शरीर का मैं कोई नहीं फेंको, मैं तो लकड़ा का फेंक रहा है, मेरे प्रेम के बीच में फर्क न पाया, जिस कारण प्रभु मेरा जुदा हुए अग लग फूक वैसे मूल ते ब्याज न सगल धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करुण सगल उद्यम है उद्यम पला हर का नाम जप जे सदा। फिर महाराज ने लकड़ा कढ़िया मगर वो कढ़िया भाई मंज न कढ़िया तो महाराज ने उन भर दे दिया मंज प्यारा गुरु न गुरु मंज प्यारा मंज जाग का बहुता गुरु लंघन आया। ये हम परमेश्वर नाल मिलना हो जन्म वर्ग कटना हो भाई जिदा भगत ने की कबीर नाम देवाद करने की हैगी उदा करे बंदा उस पास लगे। देखो कबीर नु अंतर जामी परमात्मा ने दर्शन दिते है, कबीर साहब ने कहा कबीरा जो मर्जी मंग ला शब्दों का कोट सूर जाके प्रगास कोट महादेव को लास दुर्गा कोट जाके मर्दन करे ब्रह्मा कोट भेद उचरे जो जाचो तो केवल नाम आन देव से नहीं काम। हे प्रभु हे अंतरयामी हे प्रेरक तेरे दरवाजे के बीच पता नहीं किन्ने ब्रह्मा किन्ने विष्णु किन्ने शिव जी किन्ने इंद्र किन्ने चंद्रमा किन्ने सूरज किन्ने आकाश पावन लगन जल पृथ्वी किन्निया रिधिया किन्निया सिद्धियां हैगियां इन्हां नाल मेरा कोई काम नहीं, मैं तो अपना नाम ये मनुखा दे मिली है उन्हू पाने वास्ते मनुखा दे मिली है ई ते परे होर कोई काम नहीं। संसार की उस उत्पत्ति से पहले वो परमात्मा सत था, महापरलो ते बाद भी परमात्मा सत होगा हूं भी वो परमात्मा सत है। ये संसार अपनी उत्पत्ति से पहले नहीं था, महापरलो ते बीच में नहीं होगा हूं भी नहीं है। जैसे राजा हैगा वो सुपना आया राजे नु वो सुपन अवस्था के बीच में राजा भिखारी बन गया, वो भिखारी कहानी है तो राजा ही वो तो निंदा दोष करके है, वो पहला भी राजा मगरों भी राजा हूं भी राजा ही है, भिखारी पुना पहला भी नहीं मगरों भी नहीं हूं भी नहीं, ऐसा ही वो परमात्मा हैगा। इन देखो पंजवे अपने पंजवे पिता का शब्द आंदा है तू फेर साख तेरी फूली तू सूखम होया स्थूली तू जल नद तू फेन बुद्ध बदा तुद बन पालिए जियो तू सूत मनिये भी तू है तू गंठी मेर से तू है आद मध अंत पदा सोई अगर न कोई दिखा लिए जियो तू निर्गुण सरगुण सुखदाता तू निर्वाण रसिया रंगदाता अपने कर्तव्य आपे जाने आपे तुद संभालिए जियो तू ठाकुर सेवक प्रवापे तू गुप्त प्रगट प्रवापे नानक दास सदा गुण गावे एक भोली नजर निहालिए जियो। उस परमात्मा नु कथन किया दरबार साहब के बीच में भी तीन तरह की वाणी एक कर्म कांड है एक उपासना कांड एक ज्ञान कांड है। कर्म कांड वो होंगे जो भाई गुरदास जी ने लिखा हूं तो सकोल कुमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे हूं तो सकोल कुमाया पर नारी दे नेर न जावे हूं तो सकोल कुमाया पर ददबे नु हथ न लावे हूं तो सकोल कुमाया सतगुर का उपदेश कुमावे हूं तो सकोल कुमाया थोड़ा समय थोड़ा ही खावे गुरमुख सोई सहज समावे। ऐसा संसार के बीच में रहे ये कर्म कांड है। उपासना कांड का दरबार साहब के बीच में 4500 शब्द है। पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर ताकि योग ही जे रे जन तारे ब्रह्मांड खंड हर ताको नाम जपी जे रे मन की मती ते आगो हर जन हुकुम भू सुख पाइये रे जो कुछ करे भले सोई पल मानो सुख दुख होई ते आइये रे कोट पत खन माहे उदारे करते बार न लागे रे दीन दरद दुख पंजन स्वामी जिस पावे तिसे नवाजे रे सबको मात पिता पर पालक जी प्राण सुख सागे रे दिंदे टोट नहीं तिस करते पूरे रे हो दत नागे रे जाचक जाचे ना प्रव तेरा घट घट अंतर सोई रे नानक दास ताकी शरनाई ताते फिर थन कोई रे। इस करके महाराज ने तो फैसला कर दिता मुक्ति विखे भी राग जो बंधन विखे स्नेह ए सब ग्रंथन को मतो मन माने सो करे। गुरु साहब कहते हैं जे तू मुक्त होना परमेश्वर बिना किसी नाल प्यार ना कर परमेश्वर बिना किसी नु अपना ना मन ते जे तू नरकां वे जाना जन्म मरण लेना तो दुनिया नाल प्यार पा ले। ये सारिया वेदा ग्रंथा का सिद्धांत हैगा। देखो मदा अपने बसंत लता हुई है बसंत लता नु सुमंद खां पठान ने आख्या सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज शरीर छड गए साहबजादे शरीर छड गए सिख सारे आनंदपुर साहब खत्म हो गए पता नहीं किथे गए मैं हूं तेरे नाल निकाह करना है तू मेरे नाल शादी कर ले। ते बसंत लता ने कहा मेरे नाल माता माता साहब देवां दा तो दसवें महाराज का वायदा हैगा उन्हें मैनु पुत्री आख्या सी उन्हें आख्या सी पुत्री इस लोक विच भी तेरी सहायता करेंगे परलोक विच भी मेरी सहायता करेंगे मैनु नेशा हो मेरी सहायता करूंगे।
मुंडका कहने लगे कितों तेरी सहायता करूँ गए, देख मेरे पर खंडा हैगा हमें मैं तेरा सिर उतार देगा। किथे वो सहायता करने वाले तेरे हैगे उन्होंने कोई नहीं पता किथे गया, सद उन्होंने पुकार उन्होंने। उस वेले बसंत लता ने हरनी मांगो हाथी मांगो सन्ने मांगो ध्रुव मांगो द्रौपदी मांगो महाराज ने पुकारिया। महाराज तुसी आख्या जी तू साडी पुत्री है, इस लोक विच भी तेरे जामन होवांगे पर लोक विच भी तेरे जामन होवांगे, हुण तुसी किथे चले गए मेरी आगे आके सहायता करो। उस वेले बसंत लता ने वेख्या था गुरु साहब अपने कोहे ते चल के ते माता साहब देवां नाल अपने पंजा प्यारियां नाल साहबजादा नाल आ गए। ते संबंध खान गसी पै गई। उस वेले महाराज है कि उन्हां दी सहायता करती पई बीबी दयाल कौर जलंधर के बीच में रहने वाली सी, ये अपने पिता नाथ जसवीर पिता दे पास श्री आनंदपुर साहब जंग के मौके दर्शन करने वास्ते जाती सी, रास्ते पठान बेईमान हो गया उन्हें पिता का सिर कट दिता, उसने बहरा किया था।

तू उतना चिर ही सुखी वस सकेंगी जितना चिर जीव आत्मा तेरा साथी तेरे नाल है। जदो तेरा साथी जीव आत्मा उठ के चल पवेगा तदो ही काया तू मिट्टी विच रुल जावेंगी जो सह प्रमाण कर रहे हैं।

एक आया जितना चिर तेरा खसम जीव आत्मा तेरे घर विच वसदा है सारे लोकी तेनु जी जी आखदे हन सारे तेरा आदर सत्कार करदे हन पर सह फरमाउंदे हन हे काया हे जिंदे जदों तेरा निमाणा कंत जीव आत्मा उठ के तुर पवेगा तदो कोई भी तेरी बात नहीं पूछेगा जो साहेब अपनी वाणी द्वारा प्रमाण कर रहे हैं।

जितना चिर तू पेके घर विच पाप इस संसार विच जितना चिर तू पेके घर विच रह के उस खसम प्रभु दा सिमरन करेंगी तद ही सौरे घर विच परलोक विच जाके तू सुखी वसेंगी। जो साहेब अपनी बाणी द्वारा प्रमाण कर रहे हैं।

सतगुरु रायपुर विच आए चरण पाए बेंत संगतां ने दर्शन कीते बख्शा हासिल कीतियां ता इन्हां दोनां नूं पता लगा सोना ते मोहना के सहज कलगीधर पातशाह इत्थे आए हन चरण पाए हन क्यों ना असीं वी चल के दीदार करिए। मन विच उबाल उठिया दोनों पचे के चल के साहबां दे दीदार करिए। पर जिस वक्त साहबां दे दीदार करन आए पर साहब अगे नहीं हन दर्शन नहीं होए ता फिर कन्ना विच ओ आवाज पई कि ठाकुर दर्शन नहीं देवेगा। ता जिस वक्त सह वापस जान लगे ता ए दोनों जने अद्धा कु मील अगे जाके खलो गए कि एथों दी साहब लंघणगे ता असी दर्शन कर लवांगे। पर संगत ता उस रस्ते तो लंघी पर सतगुरां ने अपना घोड़ा मोड़ लिया खेतां दे रस्ते दी लंघ गए ता फिर कन्नां विच ए आवाज गूंजी ठाकुर दर्शन नहीं देवेगा। ता हुण इन्हां दे मन विच ए निश्चा हो गया कि सचमुच सतगुर दर्शन नहीं देने ता दर्शना दी होर लालसा वधी मन विराग विच आ गया ता अरदास कीती पातशाह एक घड़ी भी तेरे तो बगैर नहीं रह सकदे कृपा करो एक घड़ी भी तेरे तो बगैर नहीं रह सकदे एक पल जुगां दे समान बीत रहा है जो सहबी अपनी बाणी द्वारा प्रमाण कर

अज मन विराग विच है। दोनों जने आनंदपुर साहब तुर पे कि पहला साहबां दे दर ते चल के सेवा करिए, फिर साहबां दे दीदार करा। जितना चिर सेवा नहीं करांगे उतना चिर साहबां दे दीदार नहीं हो सकते। ता दोनों जने साहबां दे बाग विच आए ता केसरा सिंह माली नूं बेनती कीती कि कृपा करो सानू ए सेवा दा मौका दे। केसरा सिंह ने गरीब जान के निमाणे जान के छोटे माली दे तौर ते रख लिया, दिन रात बूटियां दी सेवा करन लगे, श्रद्धा ते भावना नाल सेवा कर रहे हन। एक दिन सहकलवी तरपाशा बाग विच आए ता एक फुल्लां दी क्यारी दे कोल खलोते बड़े खुश होए, बड़े प्रसन्न होए ते माली केसरा सिंह नूं शाबाश दित्ती, आखिया तेरी सेवा ते असी बहुत प्रसन्न, तू बहुत सेवा करदा। ता केसरा सिंह ने बेनती कीती, पाछा ए सेवा मेरी नहीं, ए सेवा छोटे माली दी है जो बहुत गरीब हन, आप दे चरणा नाल प्यार करदे हन, पर बड़ी श्रद्धा ते भावना नाल सेवा करदे हन, ए सेवा उन्हां दी। ता साहबा ने एकदम अखां बंद कर लईआं ते मुख विचों साहबां दे ए आवाज निकली कि ठाकर दर्शन नहीं देवेगा। ए आके सह वापस चले गए। ता केसरा सिंह ने सोना ते मोहना नूं दसिया कि साहबां ने ए वचन कीते हन कि ठाकर दर्शन नहीं देवेगा। ता दोनां दे नेत्रां विच जल वह तुरे। सावण भादो दी झड़ी लग गई ते आख्या, पाछा सानू दीदार नहीं होणगे, अज मन विराग विच आ। अच्छा पाछा आप दी रिडा है, जे दर्शन नहीं ता सेवा ही सही, आप दे दर ते सेवा करके दिन गुजार लवांगे। इन्हां दा नैन कटोरे भर गए, नैन तरसन लग गए, जो सहबी अपनी बाणी द्वारा फरमान कर रहे हैं।

छाए छुट्टड़ होई मक्खन लया विरोल कै छाए छुट्टड़ होई पीड़ लई रस गन्नेओं छिलछु है न कोई रंग मजीठों निकले अड लहे न सोई वास लई फुलवाड़ियों फिर मिले न टोई काया हंस विछुन्या जिसको न सथोई बेमुख सुके रुख ज्यों बेमुख सुके रुख ज्यों वेखै

हलत मन सुगावे। ठंडा तत्ता कोयला काला करके हथ जलावे। ज्यू चक चूंदर सप दी अन्ना कोड़ी कर दिखलावे। जान रसौली देह विच वटी पीड़ रखी शर्मावे। वंश कपूत कुलछना छड़ियां बने न विच समावे।

मुंह कालख भरिए वड़िए कज्जल कोठड़ी मुंह कालख भरिए कल्लर खेती बीजिए केहो काज न सरिए टूटी पिंगे पिंगिए पैटोए मरिए कन्ना फड़ मन तारुआ क्यों दुत्तर तरिए अगलाए मंदर समय तिस नाल न फरिए

जैसे घाव घायल कै जतन कै नीको हो, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे घाव घायल कै जतन कै नीको हो, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे फाटो अंबर सियाए पुन ओडियत नांगो तो न होए तो थेगरी परेखी। जैसे फूटो बासन सवार देत है ठठेरो, गिरत न पानी पे गठीलो पेक पेखी है। तैसे गुरशरण विमुख

वंशघात अपराध करारे, मद पी जुए खेल दे जोहन पर नारे, मोहन पराए लक्ष्मी ठग चोर चगारे, विश्वास ध्रोई आकृत घन पापी हत्यारे, लख करोड़ी जोड़ियन

सिर छार उड़ावे। तुम में अमृत सिंजिए कुड़त न जावे, सिमल रुख सरेविए फल हाथ न आवे। निंदक नाम भी होने सत्संग न पाए, मूर्ख सच न जाननी। निंदक

उस खंडे बाटे दी पहल नू छक लिया। उस सवा सवा लख दे नाल लड़न दे काबल हो गए, उस विच इतनी शक्ति भर गई।

खूनखार शराबी हाथियों नाल लड़न दी समर्था रखन लगे। ये शक्ति सारी खंडे बाटे दे अमृत दी, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह

गिद्धड़ों से मैं शेर मरवाऊं, सवा लाख से एक लड़ाऊं, होया भी ऐसा। लखां लखां फौजां नाल

पवित्र खून ओ पवित्र केसर मथे ते लगा दिता, जिसनू कोई मुड़के पूंज नहीं सकया। एक कुर्बानी है।

नानक नु देखे है, तू आई है। कुछ भरोसा होया मन नु कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पासे भाई अजय राव अपने सहुरा साहब मेहता कालू जी दे पैरां ते मत्था टेकिया। मेहता जी ने प्यार दिता ते भाई अजय राम जी भी पुछदे ने, पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए, असी ते इस आस ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज जी दर्शन होणगे। भाई अजय राम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब दे भाईया लगते ने, जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने, पर ओ रिश्तेदारी कट और गुरु नानक साहब दे सेवक ज्यादा ने। मेहता कालू जी कहन लगे, जय राम तुसी आए हो, मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते है, भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ए भी आए ता बेबे नानकी जी दे दर्शन कीते। इन्हां ने हाथ जोड़ के आखिया, बेबे जी गुरु नानक साहब आए ने। ता बेबे नानक जी कहन लगे, हाली आए ते नहीं, पर जद बसंत रुत ने आना होवे ठंडी हवा पहला चलन लग पैंदी, बहार ने आना होवे कुंजां दियां डारां पहला उड्डन लग पैंदियां ने। जे गुरु नानक दे प्यारे आए ने ते गुरु नानक भी अज जरूर आवेगा। भाई अजय राव गुरु नानक साहब दी याद विच जंगल वल तुर पए, एक दरख्त दे थले बैठे बड़े वैराग दे विच गुरु नानक साहब दा उचारिया होया ए शब्द गाण लग पए। अमली अमल ना अंबड़ै मच्छी नीर ना होए, जो रते सह अपने तिन भावे सब कोए। ऐ पातशाह जिस तरह अमली अमल नाल प्यार करदा, अमल तो बगैर जी नहीं सकदा, मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकदी, असी भी तेरे नाल इस तरह ही प्यार करने हैं, तेरे बगैर असी भी जी नहीं सकते।

चंद्रमा का तृप्ता जी अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद विच मंजी ते लंबे पए। एक पासे मेहता कालू जी भरा पए देखते और एक पासे भाई अजय राम जी और एक पासे रायपोए की तलवंडी का राजा राय बुलार और प्यारे उड़ीकते पए ने कि इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी विच मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया है। मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पै थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल झूम उठे और आवाज मारदे ने, तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदिया होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े होए और सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखिल होए और आंदिया धन गुरु नानक साहब ने इस सद लाई, सत करतार, इस सत करतार अंदर जिवें लह गया दिल की गहराई विच। मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे। धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए, गुरु होण दा मन विच गुमान ने अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया। जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारां करदी है ओ धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए, कंड ते हाथ फेरे है, अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई, बड़ा समा हो गया तैनूं उड़ीकदे आ, तैनूं बड़ा मैं झिड़किया, तैनूं मैं एक वारी चपेड़ा भी मारी है, पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया, कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल। धन गुरु नानक साहब माता तृप्ता जी दे कोल आए, मंजी ते कोल बैठे ते की देखते ने। माता जी दी अखां बंद ने, हाथां विच चोला है, आपे कदे कहंदे ने बेटा नानक ऐ चोला पा लै, आप ही फिर कह उठते ने लिया मां मैनू चोला पवा। ए वैराग देखिया ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया, लिया मां मैनू चोला पवा। अखां खोलियां, सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर्ग घुट के छाती ना लाया, अथरू किधे रुकन। कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्म दिन ते चोला सी के रख दी है। ते साहब जी कहन लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच एक खबर सारे शहर विच फैल गई, संगतां शहर दे वासी और ओ प्यारे जड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते उमड़ पए। ते बेबे नानकी जी हाल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लें

जद इतने बचन कहे भैन जी है बेबे नानकी तुसी वड़े हो तुसी मेरे पैरा ते मत्था टेको ते नहीं हो सकता सात संग एक एक लफज विचों साडे जीवन वास्ते सिख्या है ते वक्री गल इना गल्ला नू कोई मन्ने पावे ना मन्ने पर सुख ता मनन विच ही है हुण तां गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नू किया मरदाने है हुण तुसी जाके भाई अजय राम जी नू लेके आओ शहर वासियां नू पता लग गया सी दीपमाला उस वेले शुरू हो गई कि धन गुरु नानक साहब का अज जन्मदिन मनाने का सुभाग प्राप्त हो रहा है पर कुछ देर बाद धन गुरु नानक साहब आप उठे ता पिता मेहता कालू जी पुछते ने बेटा किथे चले साहब जी कहन लगे मरदाना भाई अजय राम नू वैराग विच उठा नहीं सके धन गुरु नानक साहब आप उस जगह पहुंचे जिथे भाई अजय राम जी वैराग विच बैठे शब्द गा रहे सन अगे भाई मरदाना कोल बैठे शब्द पढ़ रहे और वार वार कह रहे सन जय राम जी उठो धन गुरु नानक साहब आ गए ने पर भाई अजय राम जी वैराग विचों उठ ना सके क्योंकि ए प्यार भागा नाल मिलता है और इस प्यार नूं उही जानता है जिसने ये प्यार किया। भगत कबीर जी कहते हैं सो कत जाने पीर पर आई जाके अंतर दर्द ना पाई। भगत रविदास और भगत कबीर साहब दोनों दे शब्द पढ़िए एको गल नजर आती। भगत रविदास वो भी मन की तड़प दसते ने और भगत कबीर साहब जी कहते ने लागी होए सो जाने वीर राम भगत अणियाले तीर कि प्रेमा भगती दे तीर जेड़े ने जिन्हों लग जा जिन्हों तीर लगते ने उही जाने

सजे हम हैं, सेव करी इन्हीं की

bitte Tomo Harris.

अपने दास को अपने दास को प्यासा

अनेक सुख रस भोगन पूरे ग्रह सोहिन चंदन सुगंध ग्रह सोहिन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे।

उपदेश देने लिए इत्थे आया। कबीर जी चले गए, कुछ दिन बीते, फिर उथों दी लंघे ते मन विच ख्याल आया भई कोई गल नहीं, जे शेठ ने उस दिन किया नहीं मन्या, हो सकदा ओ घड़ी उस लई चंगी ना होवे, अज दी घड़ी पवित्र होवे, अज ही मेरी बेनती करन ते मन जावे, ते साडा की विगड़िया है, बेनती कर ही चलते हां। कबीर जी फिर जा खड़ोते, कहन लगे सेठ जी सत संगत विच आया करो। हुण बड़े हंकार दे विच आके अपने नौकरां नूं कहन लगा, भई एक बंदा तुहाडे कोल नहीं मुड़दा, गाकी दा टाइम है, इत्थे आके खड़ो जांदा, सत संगत विच आया करो, इस नूं धक्के मार के परे छड के आओ। कबीर जी नूं धक्के पए पर बुरा नहीं मनाया, आख्या इस दे भाग ही ऐसे हन। कुछ दिन बीते, कबीर जी फिर इथों दी लंघे ते मन विच दया आ गई, मन विच ख्याल आ गया भई कोई गल नहीं, इन्हां ने धक्के मारे हन, हो सकदा है ए सत संगत विच जुड़ जावे, एदा भला हो जावे, इनू मनुच्छा जन्म दा पता नहीं है, कितनी अमोलक दात है। उचारण करो श्री वाहिगुरु। जिवें कोई बिच्छू डुब रहा सी ना पानी दे विच, महापुरखा ने उसनू कढ़ना चाहिया बिच्छू, ते बिच्छू ने डंग मार दिता, हथ कंब गया, फिर डिग पिया, फिर कढ़िया, फिर उसने डंग मारिया, हथ कंब गया महापुरशां दा, फिर डिग पिया, ते जदों फिर कढ़न लगे ना, ते कोल खड़ोता सेवक कहिंदा, महाराज इस नूं डुबन दिओ, तुसी इहदा भला सोचदे हो, ए तुहानूं डंग मारदा। तमा पुरख कहिण लगे, भाई ए डंग क्यों मारदा, ए क्यों डसदा है? आख्या जी इस दा सुभाव है, इसका सुभा ही ऐसा है। तो महापुरख कहन लगे, जे एक कीड़ा नहीं अपना सुभा त्यागदा, ते मैं अपना सुभाव दा किवें त्याग कर दिया? उचारण करो श्री वाहिगुरु। मैं अपना परोपकारी सुभाव क्यों छड़ देवां? कबीर जी अज जदों तीसरी वेरा लंघे, ते कहन लगे कोई नहीं, धक्के मारे हन, कोई गल नहीं, इसका पला हो जावे, ते फिर जा खड़ोते, ते आवाज ओ सच दी आवाज कन्ना ते पाई, आख्या सेठ जी सत संगत विच आया करो। हुण सेठ ने अपने नौकरां वल घूर के अखां लाल करके आख्या, तुहाडे कोल इक्को बंदा नहीं मुड़दा, अज इस नूं ऐसी मार दिओ कि इत्थे आउण जोगा ही ना रहे। कबीर जी कले सन, सारे नौकर उन्हां नूं पै गए, लहू लुहान कर दिता। कबीर जी जदों उठन लगे ना, ते कहन लगे, ओए सेठ तेरी तां उम्र ही थोड़ी रह गई है, क्योंकि जेड़े महापुरखां नूं, गुरमुखां नूं, भले पुरशां नूं सताउंदे हन, ओ एवें समझ लैण जिवें आपन हथी अपनी जड़ आप उपटे। जेड़े जुलम करदे हन संतां महापुरखां भगतां दे उपर, ओ कलंकी भी हो जांदे हन और नष्ट भी हो जांदे हन, और फिर उनां दा नाम माड़ियां अखरां विच पुकारिया जांदा। जिवें रोज तुसी कहंदे हो, हरनाकश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, उन्हां दा नाम दुष्ट करके पुकारिया जांदा है, जो भगतां नूं सताउंदे हन। उचारण करो श्री वाहिगुरु। कबीर जी आ गए, इधर सेठ समा अपना व्यर्थ गवा के गुजर गया, काफी समा बीतन दे बाद कबीर जी जा रहे हन सैर करते हुए, ते की वेख्या, एक बड़ा वड्डा कट होया हुआ है। आख्या की है? किसे ने दस्या जी, बैल बेहोश होके डिग पे है, क्योंकि उदे ऊपर पार
ਬਹੁਤ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਭਾਰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅੰਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਬਈ ਜਪਿਆ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਚਾਰ ਪਾਉਂ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਂਗਾ ਪਰੇਹੀ ਤਬ ਕਤ ਮੂੰਡ ਲਕਈ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨ ਬੈਲ ਬਿਰਾਨੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਲ ਵੀ ਜੂਨੀ ਜੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਚੁਰਮੁਦ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੂਨੀਆਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਰੀ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਆਖਰੀ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

There is one true source of reality, the Creator, infinite.